शिल अलूरी चटणी साधन पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुर सिखी देवा लाख भगत जगत विच

परम पिता अकाल पुरख महाराज दी बड़ी मेहर होई के डुबदे होए संसार दे उपर कृपा कीती। सतगुरु ने सब तो पहला अवतार धार के सतगुरु ते संसार ते कृपा कीती। सतगुरु ने सब तो वड्डी कृपा ए कीती बई संसार अंदर अवतरे प्रगट हो गए। अवतार लेना संसार दे लोगां वास्ते शायद कोई वड्डी गल नहीं सी, क्योंकि समय समय अनुसार

तिसनो सदा सुख, जिस तू आवे चित तिस जम नाहि दुख, जिस तू आवे चित तिसके काड़िया, जिसदा करता मित्र सब काज संवारिया, जिस तू आवे चित सो परवान जने, जिस तू आवे चित बहुता तिस धन।

चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबू न झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्व को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन भरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे। चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता,

अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गावर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्नि शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे।

संत कबीर जी का यह शब्द है। इस शब्द के विच भगत कबीर जी इंसान नू जीव नू इसकी जिंदगी के अखीर दे विच इस दे नाल की हुंदा है उस दे मतलब इसनू सुचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं कि अकाल पुरख वालों जीवन की जो एनर्जी सानू प्राप्त हुई है उस एनर्जी नू असीं किमें यूटिलाइज करते हैं, किमें वरतते हैं, किस किस चीज़ उते उस एनर्जी नू असीं स्पेंड करते हैं, उस का सातों हिसाब किताब पूछा जाए। और ये भी पूछा जाएगा कि जिस गोल नू अकम्पलिश करन दे वास्ते ए लाइफ एनर्जी ए ह्यूमन फॉर्म दा एक मौका दिता गया सी कि उस गोल नू अचीव कीता है जा नहीं, क्योंकि आम इंसान जदों ओ जिंदगी जींदा है तो उसनू ए ख्याल नहीं रह जांदा कि मेरे जीवन दे आखिर दे विच जाके मैनू किसी मुश्किल दा सामना करना पैना, उदों मैनू तकलीफ होएगी, उसकी मैनू सजा मिलेगी, उसका कोई मेरे तो हिसाब किताब पूछने वाला है। आम तौर पर साड़ी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि आ जग मिठा अगला किंड, लेकिन गुरु बाबा जी की बाणी इस गल के नाल सहमत नहीं। गुरु महाराज जी की बाणी के विच अनेक अत्यंत शब्द ऐसे हैं जो इंसान नू ए समझांदे हन कि तेरे हर कर्म दा कोई ना कोई हिसाब किताब है, पाप तेरे हर कर्म दा कोई ना कोई कंसीक्वेंस है, हर कर्म दा कोई ना कोई नतीजा है, कोई रिजल्ट है। गुरु नानक साहब महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन, लेख है बोलन बोलना, लेख है खाना खाओ, लेख है बोलन बोलना, लेख है खाना खाओ, लेख है वाट चलाई है, लेख है सुन वेखाओ, लेख है सां लवाइए, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया रचना तो अंधे नाम विसारिया ना तिस ए ना ओ। बहुत खूबसूरत गल है और बहुत ही अजिही गल है जो साड़ी समझ तो बाहर है, क्योंकि साड़ी समझ तो बाहर इस करके है क्योंकि इस चीज की समझ कोई सानू दिंदा नहीं, इस करके साड़ी समझ तो बाहर है, नहीं तो साड़ी जिंदगी दा ए समझ हिस्सा होनी चाहिए। गुरु महाराज जी आखदे हन लेख है बोलन बोलना, जो कुछ भी असी बोलते हैं ना वो हर बोल जो असी बोलते हाँ वो भी किसी लेखे दे विच, लेख है बोलन बोलना, लेख है सुन वेखाओ, किमें असी बोलते हाँ उसका भी कोई ना कोई लेखा जोखा है। प्यार नाल बोलते हाँ या फिक्का बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर असी फिक्का बोलते हाँ तो महाराज जी आखते हैं नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, पहला कंसीक्वेंस तो उसका यह है कि तुहाडा अपना तन अते मन फिक्का हो जाए। फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, अते उस इंसान की जिहड़ी सो है जिहड़ी उसकी मशहूरी है वो ये हो जाएगी कि बड़ा फिक्का इंसान, कंसीक्वेंस है फिक्का बोलने।
ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਪਾਣਾ ਮੈਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਲ

कतहु सुचेत हो के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी। कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फते नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिसाच कऊ प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूं